0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को नेचर दौरे की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का सनई और सर्व बातों में संबंध में सफल मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इसी नेचर अल्लाह पहले नेचर नहीं अल्लाह पहला बना अलग चीज है इसी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय जैसा व्यक्ति जैसा सर्कमस्टेंस उसको परखते हुए अपने को इसी कर देवे इसी अर्थात मिलनसार टाइट नेचर बहुत रोना अच्छा ऑफिशियल नहीं ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं और समय पर जब समय ऐसा है उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वो गुण के बजाय उनकी विशेषता नहीं उस समय लगती अपने को मोल्ड कर सके मिलनसार हो सके छोटा हो बड़ा हो बड़े से बड़ेपन में चल सके छोटे से छोटे पद में चल सके साथियों में साथी बन के चल सके परों से रिगार्ड से चल सके बोल्ड कर सके इजी शरीर भी इजी रखती है ना तो बोल्ड जाती है जहाँ भी बोल्ड नहीं चल और टाइट होगा तो बोल्ड नहीं सके अल्लाह बेला भी नहीं इसी है तो चाहता इसी हो जाए अल्लाह बेला हो जाए नहीं बाप दादा ने कहा ना इसी हो जाओ इसलिए इसी हो गए ऐसे नहीं करना इसी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है उसके दो शब्द ही है जो कामन शब्द है, मुश्किल भी नहीं है और सभी यूज़ भी।

तो सहज विधि पहले भी बताई है, इसमें और मेरे को परिवर्तन करने याद है। देखो जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने मैं हूँ ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा। ये नेचुरल स्मृति में लाओ, मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा। शब्द बोलते हो पहले को मेरा बाबा, पीछे मेरा ये रुमाल, मेरा साथ।

0: Mira, shove the bola. Baba Samne. Me shove the bola. Atma Samne. Ye nature or natural bana.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा? सदा खुश नसीब और खुश निमा बन जाए तो अभी संकल्प को अमृत वेले बाप दादा से मिलन मना के बाद ये रोज स्मृति में लाना और सारे दिन में बीच बीच में चेक करना, बाप दादा टाइम फिक्स नहीं करते लेकिन आप अपना टाइम फिक्स करो, बीच बीच में चेक करना तो जो बाप दादा के आगे बर्थडे पर वायदा किया वो चाहते तो सभी है। बाप दादा आज शिकले देख रहे हैं, चाहते हाँ करेंगे करेंगे करेंगे लेकिन ये वेस्ट आ जाता है ना, तो बाप से किया हुआ वायदा भी बुला देता है। वेस्ट कदम एक मिनट अभी भी एक मिनट

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बेफिक्र बच्चा का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेला पन और के हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेला पन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस

0: सदा का अभ्यास किया। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Tschüss.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हैं, तो एक सेकंड में दो तीन मिनट के लिए राजाधिकारी की सीट पर sit.

0: अच्छा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: चलो

Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दुनिया वाली कहती है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड और वो भी

Las tigres de Valeo. Arjan Charisor.

मध्य

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

さ

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी जो भी आए हैं बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा क्यों कैसा भी है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बार कहते हैं बाबा, आज वो चैन बाबा भूल गए। बाप दादा सुन के कितना आश्चर्य लगता होगा, भूल गए। 63 जन्म भूले, अभी भी भूल गए। एक जन्म और छोटा सा जन्म, 21 फुल जन्म भूल गए। शिकल

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज क्या संकल्प किया? बनना ही है ब्रह्मा बाप समान, बनना ही बनना है, नहीं बनना ही है। कोई भी बातें हैं, बात के बजाय बाप को आगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: शिवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरी कोई करनी है, मैं ही कर सकती हूँ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ज्ञान सुनना सुनाना, तो सहज लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान को स्वरूप मिलाया
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्रह्मांड सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, योग बाप को सब प्रकार के संकल्प वा जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का भोज वो दे दिया है ना, भोज दिया है या थोड़ा सा रह गए, क्योंकि थोड़ा भी भोज फरिश्ता बनने नहीं देंगे। और जब पाप आए हैं बच्चों का बोझ लेने के लिए, तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया है वो हाथ उठाओ, दे दिया है, देखना सोच के हाथ उठाना, बोझ दे दिया है, दे दिया है। अच्छा दे दिया, मुबारक हो, दे दिया है तो बहुत मुबारक हो, और जिन्होंने नहीं दिया है वो किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र अच्छा बच्चे, तो बोझ का फिक्र होता है ना, बोझ लेने के लिए बाप आए, क्योंकि तेसठ जन्म से बाप देख रहे हैं, बोझ उठाते उठाते बच्चे सभी बहुत भारी हो गए, इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? अच्छा लगता है बोझ? सबसे सुखम बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा ने क्या देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार के आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार समय पर तो का देता भी है और अंत में भी तो का देने के निमित्त बन जाएगा। इसीलिए आज संस्कार का संस्कार करो, हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में दीवार पुरुषार्थ ही नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन दीवार पुरुषार्थ ही नहीं, कारण दीवार पुरुषार्थ क्यों नहीं होता, कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी लेकिन सिर्फ मारा नहीं जलाया भी, ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करती है, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार लेकिन जलाया नहीं, तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए संस्कार पुराने संस्कार संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सो उन्नति में बैलेंस में अंतर नहीं है। प्लान प्रैक्टिकल में करने के बाद ये नहीं कहना तो सर्विस में बिजी हो गए ना, इसीलिए सो उन्नति में अंतर आ गया, ये नहीं कहना। दोनों का बैलेंस साधारण क्यों? दूसरों की सेवा करो और स्वयं की सेवा नहीं तो ये अच्छा नहीं। दोनों का बैलेंस रखना ही सफलता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज सम्राट बाप अपने स्मृति स्वरूप सम्राट स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में सने की लहर लहरा रही है। विशेष
2: कुछ
1: इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात शनि के दिन में शनि में समय रहे ऐसे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: में फंसने से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी बाप दादा यही हर बच्चे से चाहते

kejam. Mirikot.

कि हर एक बच्चा

ही पसंद कर देंगे। आप सिर्फ एक मात्रा का अंतर कर मंसूर।

Anche ma.

0: Hey, Danny. You see me? Up in a man. Busy right
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश, बाप दादा यही कहती है कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल जैसे नारियल तोड़ के उद्घाटन करते हो, रबन काट के उद्घाटन करते हो, पहले इन चार बातों के रबन काट और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो, ये पानी डालो धरनी में, जो भी कार्य की धरनी है उसमें पहले ये नारियल का पानी डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती, नहीं तो कोई ना कोई विघ्न जरूर आता। सेवा सब करते हो लेकिन नंबर बाप दादा के पास रजिस्टर में नोट उसका होता है जो निर्विघ्न सेवादारी। बाप दादा के पास ऐसी सेवादारियों की लिस्ट है लेकिन अभी बहुत थोड़ी है, लंबी नहीं। भाषण करने वालों की लिस्ट भी आपके पास लंबी है। बाप दादा उसको भाषण करने वाला कहता है जो पहले भाषण दे सबको फिर भाषण। भाषण तो आजकल स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां बहुत अच्छा करते हैं, तालियां बजती रहती है, लेकिन बाप दादा के पास लिस्ट वो है जो निर्विघ्न सबकी प्रसन्नता संतुष्टता वाले।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप तो विश्व के परिवर्तकों, विश्व कल्याणकारियों, इसलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजा पर नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो, बिना सीट के कोई आर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते, अपना हक कोई छोड़े नहीं चाहता। आप अपना परमात्म हक, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमस्टांस आने बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो पाप का इशारा डायरेक्शन श्रीमद सकेंगे। टच होगा, ये करना है ये नहीं करना है, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान सब

चप जाओ, जैसे जाओ वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसीलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्म इंद्रिया हाथ है, जहां जाओ जब तक जाओ तब तक आर्डर से चला सकते हो। ऐसे ऐसे नहीं, योग के समय अनुभव होता है लेकिन कर्म के समय

took a final result. Ki pehle bhi beech beech mein paper liye jaate. To is विशेषता क्या करेंगे, साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको. Exit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात को विस्तार बहुत करते हैं। बोलते हैं ना, तो जैसे विस्तार फिर क्या होता है ना, तो बीज उसमें छिप जाते हैं। ऐसे वो समझते ऐसे है कि हम विस्तार कर रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संकल्प

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई रतन ऐसे भी निकलने

0: político.
1: साधारण पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ करो।

कोई एग्जाम्पल निकलने में।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोगों को पता है, पहले पहले जब मुझे सेवा में गई तो ब्रह्मा कुमारियों को सफेद साड़ियां देख करके वो दरवाजा बंद कर देते थे, दूर से ही दरवाजा बंद कर देते थे। सफेद साड़ी ग्रस्तों को अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए बच्चों ने सेवा कैसे शुरू की उनके पोस्ट बॉक्स में डालना दी थी, क्योंकि पोस्ट तो निकालेंगे तो पोस्ट में कईयों को संदेश मिल जाता था। पहले पहले सर्विस जब आरंभ हुई है तो बहुत मेहनत से शुरू हुई।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

ser.

breathing. Eat one.

Manusia Shakti Dwana Vibration.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: नहीं सब चलता है। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा, मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन तो दे दो। दिया डायरेक्शन, अपने संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दी मौके से ने। ऐसे त्यार होना ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा, करे हलचल करना तो ऐसा है, करना है ये पता दे देते, आर्डर होगा पूछ के नहीं तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक आर्डर देंगे आज जाओ। इसको कहा जाता है डबल लाइट फ्रिजता, आर्डर हुआ और चला जैसे सब छोड़ना
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: anillo.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी कर्म आरंभ करते हो कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर वाली आत्माओं की साधारण कर्म शुरू हुआ। समृद्धि स्वरूप से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क।

0: जैसे हथके मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य के सीट पर सेटोगे फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिक बन के स्वराज अधिकारी के सीट पर से फिर हर कार्य करो इस मालिक पर की अथॉरिटी की चेकिंग इसकी निशानी है मालिक बन के अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में खुशी के अनुभूति होगी और रिजल्ट
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सबको राज भी करना है, और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना, परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जाती है

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की, सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्म कार्य के निमित्त कोई भी कार्य में आऊं, बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट चलाने वाला आप ही चलाएंगा। ये निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। करावना
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बिजनेस वाले हाथ उठाओ, ये सब बिजनेस है। अच्छा, नीचे करो नीचे। तो बिजनेस वाले क्या सोचते हैं? खास आपको चांस मिला है, बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ। श्रम खुद किया वो तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेस मैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है क्या होगा। तो उन्हों को चिंता से हटाए, अपनी राशि खजाने का मैं तो सुनाऊ। जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है, लेकिन अपन ने हम जिन्स कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं, उन्हों को चिंता है क्या होगा, कैसे होगा, है चिंता? हाँ, नहीं है तो हाथ उठाओ। अच्छा, नहीं है चिंता, कल कुछ हो जाए तो चिंता नहीं है। बेफिक्र बात है, बिजनेस मैन बेफिक्र बात है। दोनों ने हाथ उठाया। अच्छा, नहीं अभी आप नीचे करो। जिसको थोड़ा थोड़ा फिक्र है वो हाथ उठा सकते हो, शर्म आएगा। बाप दादा ने टाइट ले दिया है, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो जरूर, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना, बेगमपुर में बैठ जाना, तो बादशाह भी हो जाएंगे और बेगमपुर में भी हो जाएंगे। आपने आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आवे, बेफिक्र होके तोड़ने वाला भी बच जाएगा, और फिक्र में होके निर्णय ठीक नहीं होगा तो एक दिन में क्या से क्या बन जाते, ये तो जानते ही हो। बेफिक्र होंगे निर्णय अच्छा होगा और बच जाए, टचिंग होगी अभी समय अनुसार ये करे या नहीं करे, इसीलिए फिक्र मारना, बिजनेस भी करना और अपनी स्थिति भी करना। सदैव ये याद रखो, बेफिक्र बात जाए, फिक्र की बात भी बदल जाएगी। हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त कभी नहीं, हिम्मत से बाप की मदद मिलती रही। बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं हिम्मत ही के मददगार नहीं। आप सोचेंगे बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले ये सोचो हिम्मत है, हिम्मत बच्चे की मदद बाप की। आधा शब्द नहीं पकड़ो, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी, दिल शिकस्त ना होकर हिम्मत रखते चलो तो मदद गुप्त मिलती रहेगी। तो बोलो कौन हो, बिजनेसमैन सभी बोलो कौन हो, कौन हो, बेफिक्र बच जाओ। हाँ बोलो, हाँ बेफिक्र बच जाओ, ये याद रखना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, ये रायल रूफ के मैमे के गीत बहुत सुनते है। मैंने जो किया वो ही ठीक है, मैंने जो सोचा वो ही ठीक है, वो ही होना चाहिए।
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आराम का अर्थ है आराम फिर करना, आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना, वो आराम नहीं करना धनलपन।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल कितने

salto.

Toots.

Ese

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव ये गुणों की खान है। सिर्फ निमित्त भाव आ जाए हर समय सभी गुण सहज आ सकते, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

be happy.

अपने को बिंदु रूप में

Síganme, la Gaia. Acha. Api. Sarıdın.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा लगता।

0: सिकायत गाड़ी नहीं बन सकते तो अनुभव संबंध में लाने वाले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Shut up.

सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सकता है, कभी कभी हो जाएगा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जितना प्यार है ना उतना साथ में, प्यार भी चाहिए शक्ति भी चाहिए। अभी शक्ति को बढ़ो, क्या करेंगे जो बाप दादा ने कहा है, पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द लगाओ, वायुमंडल बनाओ, एक दो किस सहयोगी बन, हरेक अपने अपने स्थान पर रहते हैं, स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ, तो क्या करेंगे अभी? नवीनता करेंगे ना, जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना, ये करेंगे, लेकिन जब कर्म योगी बनते हो संबंध संपर्क में आते हो उसमें फर्क हो जाता। कर्म योगी स्थिति उसमें अटेंशन ज्यादा चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Ciao।

ശ്രേഷ്ഠപ്രാലവത് ചമക്കകത ദോസ്ര

Peace.

Mission.

Pensarva casanoco. Chamacarniki. Chabiel.

Chapico.

Show.

Yes.

下一

0: निश्चित अनुभव करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज़ करके देख पीछे आता है, जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता, अचानक के खेल होने कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते, कहते हैं कि समय थोड़ा और जाएगा ना तो वैराग तो होगा, तो वैराग के समय आप ही रफ्तार तेज हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने कह दिए कि किसकी भी अंतम काल हो सकता है। अभी अभी देखो कितने भ्रमण जा रहे हैं, उन्हों को पता था क्या स्मृति में।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है
2: आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई कोई बच्चे थोड़े ज्यादा गंभीर बनते हैं, गंभीरता अच्छी है, लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगता है, तो सीरियस किसको अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, और ऐसे ज्यादा गंभीर वाला चेहरा उसे डरती है, दूर भागती है, सहयोगी नहीं बनेंगे।

0: हंसो नहीं, मुस्कुराओ, जोर से हंसना नहीं, मुस्कुराना। क्योंकि बाप दादा को अभी दीवार पर शरद चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आगे के लिए अब दीवार पुरशारत कर, आगे से भी आगे जाने का दृढ़ संकल्प करो। सफलता की चाबी तो बाप दादा जो भी आज बचे आए हैं उन्हों को विशेष दृढ़ता की चाबी की So

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा वैज्ञानिक, बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस महीना होती जाती है, दिन प्रतिदिन साइंस ऐसे आप साइलेंस और साइंस दोनों के अनुभवी हो, तो अपने हमजिंस को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना देना इन्हों को, साइलेंस का विज्ञान क्या है उसकी पहचान दो साइलेंस के विज्ञान से। क्या क्या होता है तो साइंस भी ज्यादा रिफाइन कर सकेंगे, क्योंकि हमारी नई दुनिया में विज्ञान तो काम में आएगा ना, बिजनेस भी होगा, लेकिन रिफाइंड रूप में होगा। अभी का विज्ञान के इन्वेंशन फायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन नई दुनिया में रिफाइंड विज्ञान होने के कारण नुकसान का नाम निशान है। ऐसे जो बड़े बड़े विज्ञानी है उनको ज्ञान दो साइलेंस का, तो फिर अपने नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान के कार्य करने में मददगार बने। तैयार करो इंजीनियर्स को, चलो पूरा ज्ञान नहीं लेवे लेकिन रेगुलर नहीं बने, लेकिन बाप को तो पहचाने। कई ऐसी आत्माएं हैं जो रेगुलर नहीं बनती है, लेकिन निश्चय और खुशी में रहती, संबंध में
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: क्षमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का क्षमा का खाता चेक करो। क्षमा हुआ और जिसके साथ कर्म किया वो भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो क्षमा नहीं होता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा को पता है, हाथ उठवाएंगे तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है कौन तैयार है, अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चीकिंग करो। अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ, नाराज नहीं किया, राशि किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुआ, सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना कार्यस्थान मिला वो चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे, ऐसी सूक्ष्म चेकिंग फिर भी अपने आप को करो, और अगर ऐसी सूक्ष्म चेकिंग में पास हो बहुत अच्छे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा

0: see up me. Yay for the Tristirago. Ye kala pele vale. Amare pariwarki. Brahman pariwarki. Moche.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इस मोटे रूप से

Skillister. Sure.

0: मन संपर्क में, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बने।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहती है God is truth। सबसे प्यारी चीज सच्चाई, क्यों जिसमें सच्चाई होती है ना उसमें सफाई रहती है। Sleep।

Just.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सीरीज का कंट्रोल हो जाता है, खड़ी हो जाती है, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता कभी नहीं भी होता। नाम है

करना है, नहीं बोलना है।

prossima. Pod. Fast result. Negarelli. SNS of Joe. Fala.

समय जाओ ऐसा।

0: सौरभ मेला।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: चले

Bye.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सबको

Kebab dadak.

0: 就是的。就是的，मट्टी में रहे हैं तो कभी कभी मट्टी में तो नहीं चले जाते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज क्या करेंगे? शिवा का खाता भराओ, तो जो कहते हो सहज योगी वो अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्रह्मांड जीवन है मसी की, संगम युग है मसी का युग, बोझ उठाने का युग नहीं, बोझ

0: ऐसे नहीं, ये तो बहुत बाबा है, ये थोड़ा ऐसा है। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरा बाबा, ब्रह्मांड जीवन अर्थात बाबा है शरीर व्याधि में भी है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसे वो माइक वाला जिसके आवाज में ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है। चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज में ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वो जिसके आवाज में ताकत हो, ऐसा माइक तैयार करो किससे मेरी दी से बेहतर को
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी। अगर नाम निकालो तो बहुत है। वतन में आज
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संबंध में करें सेवा भी।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: लेकिन अब भी सभी बच्चों को

What?

बाप दादा दोनों की सिखाई।

πάνω πρωμά.

0: Brat Pele. On sigila de bachon ko jo follow karne wale ono ko vishesh yaad pyar de de va bache va
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी हो, बाप साथ है, पहुंचने की क्या बात, कंफ्यूज होने की क्या बात, बाप का साथ का सहयोग लो, अकेले समझते हो ना तो मौज के बजाय मौज जाते हो, मौज ना दे, ठीक है ना, अभी भी मौजेंगे, नहीं मौजेंगे क्या, अभी नहीं मौज रहे हैं इस दिन, अभी मौज में हो, इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन मौज नहीं जाए, ठीक है ना, कि मौज चली जाएंगी, मौज नहीं जानी चाहिए, सेवा का बल है तो उस बल को कार्य में लगाओ, सिर्फ सेवा नहीं करो लेकिन सेवा का बल जो बाप से मिलता है उसको काम में लगा, सिर्फ सेवा कर रही है, सेवा कर रही है तो थक जाते हो, मौज भी जाते हो, लेकिन बाप के साथ का अनुभव जहाँ बाप है वहाँ मौज ही मौज, उस साथ को इमर्ज करो, सुनाया ना, याद करते हो लेकिन साथ को चूज नहीं करते, इसीलिए मौज जाते, संगम युग मौजों का युग है या मौजने का युग है, क्या है मौज का है, फिर मौजते क्यों, अभी अपने जीवन के डिक्शनरी से मौजना शब्द निकाल लो, निकाल लिया, निकाल लिया, पक्का कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, एकदम मिटा दो, परमात्मा के बच्चे और मौज में नहीं रहे तो और कौन रहेगा, और कोई है क्या, नहीं तो सदा मौज ही मौज, सभी अपने ड्यूटी पर खुश हो, कि थोड़ा थोड़ा थोड़ा किटकिट है ड्यूटी में, नहीं नहीं, कुछ भी हो ये पेपर पास करना है, बात नहीं है पेपर, तो पेपर पास करने में खुशी होती है ना, क्लास आगे बढ़ती है ना, तो बात हो गई, समस्या आ गई, ये नहीं सोचो पेपर आया पास हुआ मौज मना, जब बच्चे पेपर पास करके आते हैं कितने मौज में होते हैं, पूछते हैं क्या ये पेपर तो आएंगे, पेपर ही अनुभव में आगे बढ़ाते, इसलिए सदा मौज में रहते, सेवादारी नहीं लेकिन मौज में रहने वाले। सदा ये अपना टाइटल याद करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा मुस्कुराती रहती है तो बचता है और लाइट शुरू हो जाती है। बाप दादा समझती है कि बच्चे खड़ी खड़ी तक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा प्यार का सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं, टांगों में मसाज हो जाते। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा। बाप से मिलन का सदा आगे बढ़ाते, लेकिन बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलते है। बाप एक और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिक्की लदे हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कमाते

0: सब जा ठीक है नहीं ठीक है ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में ना। अभी बिंदी के मैदों को कार्य में लगाओ, तीन बिंदियों को तो जानते हो ना, लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र गति कर रहे हैं,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई कोई बच्ची कहती है, बाप ने तो सर्वशक्तियां दी लेकिन कोई कोई समय जिस शक्ति की आवश्यकता पूरी हो जाती है फिर आती। इसका कारण क्या? वरदान में बाप ने दी सर्वशक्तिवान के स्मृति के सीट पर नहीं होते हो, कोई भी किसका आर्डर मानते हैं तो सीट वाले का आर्डर मानते। कोई भी शक्ति का आर्डर करते हो

0: मास्टर सर्वशक्तिमान बने। तो इतनी पावरफुल
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हाथ उठाने में होशियार सभी है।

丧。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Beat yourself.

Aqui.

Seco y coico. Sharir baby. एका करो कि बैठने की आदत नहीं होती है। कोई को होती वो मन जा जाओ जैसे जाओ नहीं करनी पड़ती।

Frechdaço.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी खुश राजी और कदम आगे बढ़ाने वाले निमित्त बने हुए फरक है।

请不请我听。压根儿的姐姐，我把他拿给的钱，你跟爸爸拿苦钱，给不起。Yeah.

Bobara.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अब different।

नहीं तो माया आई कहां से, ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो वो बड़ी खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता, तो चीख करो तो माया ने कोई चोर के गेट तो नहीं बना के रखा है। और गेट बनाती कैसे है वो मालूम है आपकी जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोरों के ना, तो वही माया अपना गेट बना देती। क्यों? जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर तो जाने जाने ना है। उसको पता पड़ जाते है गेट कमजोर है, इससे रास्ता मिल सकते है, मिलता भी है। चलते चलते पवित्रता के संकल्प भी आते, बोल भी होता, कर्म भी हो जाते। तो है ना गेट खुला हुआ, तभी तो माया आई। तो साथ कैसे हुआ? सर्वशक्तिवान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहां से आई? कहां से आई? कमजोरी रह सकती है कमजोरी नहीं ना। तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है, लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता, कई समझते हैं हमारे में स्टूडेंट
स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय मोदी सेवादारी सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो ये राइल लो बाता कि मैं इतना कुछ करता हूं सब रूप से मदद करूं, धन से मन से धन से और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाना, फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती। ये

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, ऐसे बच्चे भी देख रही है, अच्छा पुरुषार्थ

0: शारद ही इनके वायुमंडल में नहीं आकर ओडो को भी शारद पे आगे बढ़ो, वायुमंडल दिनचर्या का ऐसे बनाओ जो सभी पुरुषारत के उमंग उत्साह से पढ़ते भी चले पढ़ाते भी चले क्योंकि एक दो के साथियों सबके प्रत शुभ भावना के आधार से बढ़ाते चलो
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल के हिसाब से दवाइयां खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्यों कि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाएं। देखो कोई रंग बिरंग की तो है ना, ये तो एक कलयुग की लास्ट का ये फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाती, अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति पर रहे है उस स्मृति में कहेंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएंगे, खुशी दिलाएंगे तो बस दो तीन दिन में दवाई से ठीक हो जाए। कभी भी दवाई या आजकल के तो बहुत नए फैशन है, कलयुग में सबसे ज्यादा है इन्वेंशन आजकल दवाइयां या अलग अलग थेरेपी कहते हैं, आज फलानी थेरेपी है आज फलानी, तो ये कलयुग का सीजन का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई कॉन्शियस बीमारी कॉन्शियस होके नहीं, तनम भी तो देखा और वो तो नहीं है, ये नहीं बात नहीं है, इसीलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। आई उसको फ्रूट तो अकेला

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आवे, स्वयं शुभ भावना शुभ कामना के तो इतने पावरफुल है चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती, नहीं तो शुभ भावना शुभ मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे।

0: pensi che la debè परिवर्तन हो जाए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: स्वभाव संस्कारों को सेवा के समय देखो ही नहीं, देखती है ना इसने ये किया, इसने ये कहा, सफलता दूर हो जाती, देखो ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ जी, और बहुत अच्छा। ये तो शब्द हर कार्य में यूज करो। स्वभाव वैरायटी है और रहने भी है। स्वभाव को देखा तो सेवा कदम बाबा करा रहा है। बाबा को देखो, बाबा का काम है, इसकी छुट्टी नहीं है बाबा की। तो बाप में तो स्वभाव नहीं है ना, तो स्वभाव देखने नहीं है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी का उमंग उत्साह है, तब तो आ तो रहे ना।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Friends.

मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए, होम वर्क में रोज दे दे। अगर मनन करो Jack.

चोट की बुद्धि करने में बिजी रहे, ऐसे रोज की मुरली उसमें जारी सब किसी

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: के दीप जगेंगे, कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते है ना। आप विश्व में
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

keep it.

Nossa.

です。

0: Kalian-Gibrit.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

वो अपमान अपना सहन नहीं कर सके।

0: अपमान की निशान।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वारिस की भाषा तो समझते हैं, समझते हैं ना, जो से मन से सहयोग से सबसे नंबर वन हो और हर कार्य में हर समय एवरेज हो, इसको कहा जाता है वारस। जिस समय बुलावा आवे उस समय हाजिर हो जाए, इसको कहा जाता है वार्स क्वालिटी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों
2: सिली।

0: परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तुझे परिवर्तन से स्व परिवर्तन बदली करे, बदली करे, नहीं करे तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालते हैं, मंजूर है, बताए बताए। अच्छा, बाप दादा 6 पास में रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाँ जी किया तो बच्चों को भी हाँ जी करना चाहिए ना, कुछ भी हो जाए। बाप दादा तो कहते हैं स्व परिवार से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, ये मैपन से मरना है। तो मरना भी पड़े
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

起来。

ஒரு சங்கல்ப பணத்தில் மேகணும். Check.

そっか。

Puppy.

resulted

सर्वशक्तिमान है, साधारण नहीं।

संकल्प सामने लाना, और रोज हम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुछ भी हो, आपका काम है बड़ों तक पहुंचाना, पहुंचाया अर्थात दिल से निकाला आपकी जिम्मेवारी पूरी। अगर आप समझते हो कि कुछ हो नहीं रहा है तो आपका इसमें पाप नहीं बनेगा, जो जिम्मेवार है उन्हों का बनेगा। आप निश्चिंत
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों की दुख की कठिनाई बड़ी वर्तन हो जाए। दिल से रहम इमर्जो क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है। इतने सभी ब्राह्मणों की साइलेंस की शक्ति रैम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सिक्किया सिर्फ सिक्किया नहीं तो, अगर सिक्किया देती भी है, देने पड़ती भी है, लेकिन किमिया और सिक्किया, किमिया रूप बन के सिक्किया दो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, आपका मर्सीफुल रूप अवश्य सिक्किया का फल दिखाएगा। देखो आजकल साइंस वाले भी पहले ऑपरेशन करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं, टिंचर भी लगाते हैं, पहले फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर सिक्किया दो, तो प्रभाव डालेंगे। नहीं तो क्या होता है, आप सिक्किया देने लगते हो, वो पहले ही आपसे ज्यादा सिक्किया के, तो सिक्किया सिक्किया की सिक्किया नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे, ऐसे नहीं करो ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट्स होंगे। इसलिए किमिया और सिक्किया साथ साथ हो।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी चेक करना अपने राज के संस्कार, अभी से धारण करने है के नहीं करना, एक के दूसरा समाना पड़े, किनारा करना पड़े, लेकिन चाहता है एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ चले। इसलिए एक तो अगर कोई नहीं बदलता है शुभ भावना रखी, और कोई नहीं बदलता है तो आप अपने को बदलो। उसने ये कहा, उसने ये किया, इसीलिए मुझे भी करना पड़ा, ये नहीं। Japan।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी नाराज नहीं होना, ना अपने ऊपर, ना कोई आत्मा के ऊपर। खुश रहना, ऐसे तो नहीं सेंटर पर जाके खुशी का एक मास खजाना जमा रहेगा, फिर धीरे धीरे खत्म तो नहीं होगा ना। खत्म होगा क्या? होगा सदा साथ रहना। अच्छा तन मन तन बाप क्यों दे दिया ना, दे दिया है। अच्छा दिल भी दे दिया, दिल बाप को दिया।

वचन दे

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो होना ही है, पहले से पता है ये होना है। लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस वर्ष में क्या बने, क्या बनेंगे, जो भी आपके चेहरे में देखे आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे, फलानी हो फलाना हो नहीं, इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप से व्यर्थ को जलाओ, ask।

0: 락시라고. 매브라만 소프리스타 더 아무래도 빌리 चलते फिरते फरिश्ता रूप फरिश्ता स्वरूप तो अच्छा लगता है ना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना फॉलो फादर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अब बाप दादा भी समझते हैं, एक विचार कर, अलग अलग विचार तो होता ही, लेकिन विचार को मिलाना वो अपने हाथ में होता। तो बाप दादा भी आप निमित बने हुए पांडवों, ये कमाल देखने चाहते। विचार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मिलाना भी होता। तो अभी आप तीनों में यही कमाल, तीन नहीं लेकिन तीनों में एक है, बाकी तो सब अच्छे निमित्तों के चला रहे हैं।
2: पापा याद कर देंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Rose.

course.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: एक बार बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो, आत्मा के रूप में देखते भी है, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, या जो मिक्स संस्कार है वो भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो कि वर्तमान संस्कार भी आते हैं सामने? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार उस रूप में देखो, तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वो नहीं हो। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वो भी आ जाते हैं वर्तमान संस्कार, वो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती। तो आत्मा ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा थे, तो ये जो अभी संगठन में रुकावट आती है वो रुकावट खत्म हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

le cambiaron. Okay.

मास्टर सर्वशक्तिमान।

0: esa verdad.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो, आता है चित्र खींचने आता है ना।

सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, घर में इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी, ड्रिल करने के लिए रेडी है, कांधे लाओ। Call.

ऐसा तख्त तो कहां भी नहीं मिलेगा, तो पहले ये चित्र निकाल।

पहली रचना श्रेष्ठ आत्मा बाप दादा के दिल

रचना इस फिरके के जड़ में बैठी।

See.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Grace.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक सेकंड में मन के मालिक बन, मन को आर्डर कर सकते हो, कर सकते।
2: I'm sorry.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से और कोई लक्ष्य

esse samba é bom.

0: tomado quebret. Shopauna. Shopkamna. Kivrti. Ortristi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसे ही भारत में भी, विदेश में भी, कोई भी, चाहे शाखाएं हैं, लेकिन संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। Sub

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी को अपना निश्चय चाहिए, कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज में आएंगे। पक्का है ना? साथ रहेंगे ना, बाप को अकेला नहीं छोड़ के चले जाना। अकेला तो नहीं अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं, इसलिए छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो, बाबा मेरा बाबा, बाबा हसर आपकी समस्या को हल कर देंगे। दिल से बोलना, बाबा ये बात है, बाबा ये करो, बाबा ये बाप बंदा हुआ है। लेकिन दिल से मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: धन तो सबके पुराने है, चाहे जवान रह चाहे बड़े, छोटी और बड़ों से भी कहां का कमजोर, चाहे बीमारी पड़ी लेकिन बीमारी की मैं सुस्ता कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी को बढ़ा देती क्यों?

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ऐसे निश्चय जारी निश्चय में पास होना है व तीन में दो में नंबर वन होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां होते भी अभी रुका हुआ है। प्रकृति भी बाप के पास आती, प्रकृति भी कहती अब बहुत बोझ हो गए। प्रकृति भी बोझ से छूटने चाहती, माया भी कहती कि मैं जानती हूं कि मेरा पार्ट अभी जाने वाला है, लेकिन ब्रह्मा परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते। बिठा देते मेरे को तो अपना राज लाने में ये चार निश्चय परसेंट में तो समय भी रुक रहा है। बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी है। अब बताओ आर्डर करे बच्चे अगर एवर रेडी नहीं है तो माया और प्रकृति को आर्डर करें। हाथ उठाओ, तैयार हो, ऐसे नहीं हाथ उठाओ। पेपर आएगा पेपर।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहती है ना तो उस समय पर शक्ति नहीं आती। वैसे शक्ति है लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना तो भी नहीं आती। है मास्टर सर्वशक्तिमान, टाइटल क्या है आपका? मास्टर सर्वशक्ति। मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सीट नहीं होते। अभी दफ्तर में भी जाओ तो जो अथॉरिटी करने वाले को होगी वो ऑर्डर करेगा तो मानते हैं ना। ऐसे दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सर्वशक्तिमान, उस सीट पर सीट नहीं होते। तो आह्वान करते भी शक्ति समय पर नहीं आती। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है, अपने मन को बिजी रखो, कभी किस शक्ति को सारे दिन में इमर्ज रखो, कभी किसी शक्ति को इमर्ज करके देखो कि उसकी ताकत क्या है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे अपने सीट पर सीट
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Just

समय के बाद फिर वही

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दादियों ने डबल विदेशों को भी मर्ज किया, डबल विदेशी हुआ।

Spencer.

0: vocês. Rádio que pode ler. Tati querido. Tu tati legal. Que mochê.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा ने जमा क्या खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रही है। समय की समापति अचानक होनी है, ये नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन, समय या स्वयं परम आत्मा? परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनेगा, इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेंगे, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो, वो रचना है। आप मास्टर रचता हो, तो रचना का इंतजार रचना करे न कर। मास्टर रचता समय का इंतजार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: oyente. ¡Ay, qué loco!
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी पत्थर में जाना न जाना अनुभव नहीं रहो, जाना है आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा, जो चाहते हैं उनको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं ना, मदद